0: नया केलॉग शुगर्स।
1: मम्मा प्लीज।
2: ओके पहले कुछ मल्टीग्रेन
0: प्लीज।
2: मल्टीग्रेन
0: ओके डी।
1: वाओ चोकोस।
2: यही तो है मल्टीग्रेन।
1: मोर चॉकलेटी।
2: हाई प्रोटीन हाई फाइबर और बिना मैदे वाला नया केलॉग्स मल्टीग्रेन चोकोस।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज

0: रिचर्ड रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 213.67 मीटर तथा 1404 किलोहर्ट्जमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। समय बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार बिहानीको 7:05 भइरहेको छ र अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम गान्धी कथा अन्तर्गत एक चिन्तन अहिंसा र गान्धीजी अजय कुमार खड्काबाट।

0: श्रोता यतिन्जेल प्रस्तुत थियो गान्धी कथा अहिंसा र गान्धीजी। वाचक हुनुहुन्थ्यो अजय कुमार खड्का।
1: जल्दी टिफिन प्याक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा एसआईआर अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
6: गत 30 मईदेखि 28 जुन 2026 सम्म बियालोहरूले

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थीं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के स्टार्ट की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देशभर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रूपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली

0: में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रूपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाये। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा ईरान संघर्ष के

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा

ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 10:31 और 5 सेकंड हो चुके हैं और मुझे पता है कि आपको इंतजार है दिल के मेल बॉक्स का। तो जल्दी से अपने वो पसंदीदा गीत अपने नाम और शहर के नाम के साथ लिख भेजिए हमें जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन लिखना कहाँ है, वहीं आज आपको बता दूं कि कुछ तकनीकी वजहों से व्हाट्सएप मैसेजेस तो मैं नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgold@gmail.com पर। जी हाँ, fmgold@gmail.com इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और सिर्फ ईमेल ही करिएगा आज, क्योंकि आज व्हाट्सएप मैसेजेस को मैं नहीं देख पाऊंगी। तकनीकी वजहें कभी कभी हो जाती है, लेकिन परेशान मत होइए, एक और जरिया तो है ना हमारे पास। ईमेल भेजिए हमें, लिख भेजिए अपना वो पसंदीदा गीत जो आप सुनना चाहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आज रेखा क्रिस्टल वॉइस, और दिल का मेल बॉक्स में आपके कुछ ईमेल्स हम तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं इनको। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमें मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाईजान राजकुमार पुडाना और सुदामानगर खंडवा से लक्ष्मी नन्नी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप का हमें मैसेज पहुंचा है। और इसके अलावा हमें लिखा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और आरती कुमारी ओम कुमार ने। कदमा जमशेदपुर से हमें मैसेज मिला है जिनमें महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल का और अफरोज शेख ने हमें मैसेज भेजा है कहां से, सुपौल बिहार से। तो इसके अलावा हमारे पास बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बीबी आराध्या साहू का मैसेज पहुंचा है। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा सिटी दीवाना ने हमें मैसेज लिखा है। पत्थर के फूल और बहुत सारी फिल्मों के नाम लिखे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने। और इसके अलावा हमारे पास होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु का मैसेज भी पहुंचा है और हमें लिखा है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह ने ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और अनिल जैन का हमें मैसेज मिला है संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन के साथ सरधना मेरठ से। और आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन भी हैं इनके साथ। और इसके साथ साथ ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार का। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका खुरवाल और भानु प्रकाश का मैसेज। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा का मैसेज। भोपालगढ़ राजस्थान से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, नूर खान, अदनान फैजान का गंजरुणवाड़ा से। और गांव कलाणा राजस्थान से हमें विक्रम कनवासरा, सचिन कनवासरा, सतीश, योगेश और युधव ने मैसेज भेजा। और ये मैसेज किसका है, सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग का। सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से हमें लिखा है। और साथ ही प्रदीप सलूजा ने हमें लिखा है संगीता सलूजा के साथ, प्रथम सलूजा के साथ जनकपुरी से। और इसके अलावा हमारे पास और भी ढेर सारे ईमेल्स पहुंच रहे हैं, लेकिन वही पुरानी आदत है कि बार बार आप मेल करते हैं, सिर्फ एक बार कीजिए काफी है। मीना अग्रवाल, महेश अग्रवाल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से हमें ईमेल किया है। कमलेश मुकुल, सचिन दीपांशु ने हमें दिल्ली से लिखा है। और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि आप कभी सरनेम के साथ लिख देते हैं और कभी बिना सरनेम के, ऐसा मत करिए, एक ही बार नाम भेजिए। कस्बा कनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा का मैसेज हमें मिला है। और हमें लिखा है किस किस ने, बहुत सारे मैसेजेस हैं, कोई भी गीत सुना दीजिए। ये ऐसे वाले जो दोस्त हैं ना हमारे, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, जो मेरी पसंद पे छोड़ देते हैं। गांव जाकोद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला, योगेश, दीपक कुमारी, पूजा का हमें ईमेल मिला है। और हमें किसने लिखा है, ये अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक, आदित्य कसाना, ग्राम पोस्ट लदावली, जिला मुरादाबाद से हमें लिख रहे हैं। और भी ढेर सारे मैसेजेस हैं, उनको भी शामिल करने की कोशिश रहेगी, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं। और इसकी पसंद हमें की है, किसने भेजी है, अफरोज शेख ने हमें लिखा है नेमुआ सुपौल बिहार से। इस गीत को सुनना चाहा है तो ये रहा आपके लिए खूबसूरत गीत।

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
1: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
3: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
2: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
4: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में, दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
6: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा। क्रिस्टल वॉइस दिल का मेल बॉक्स है ये, जहां पर आप लिख रहे हैं अपने दिल के पसंदीदा गीत। तो भाई अब आपके कुछ ईमेल्स को और शामिल कर लेते हैं। और बहुत सारे श्रोता जो चालाकी करते हैं ना, कि कभी किसी सरनेम के साथ, कभी किसी शहर के साथ, कभी किसी एड्रेस के साथ, तो कभी किसी दोस्त के साथ अलग अलग ईमेल्स करते हैं। ये मत करिए, मुझे सब पहचान में आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको ब्लॉक कर दूं। खैर, आपको सिर्फ समझा ही सकती हूँ प्यार से, और आप अच्छे दोस्त हैं तो समझेंगे भी जरूर। ऐसा मत करिए, सिर्फ एक जगह से जहां आप रहते हैं वहां के नाम से आप अपना मैसेज हमें भेजिए, और एक ही बार भेजिए, वरना मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास एक मैसेज पहुंचा है सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ का, और इसके अलावा इन्होंने ये लिखा कहां से है ये मुझे नहीं दिख रहा है, तो महाराष्ट्र पुणे से। और इसके अलावा हमारे पास मैसेज पहुंचा है TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मैसेज। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा ने काफी लंबी चौड़ी शिकायत की है और मैंने आपकी शिकायत बिल्कुल पढ़ ली है, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी कहा कि हमारे बहुत सारे श्रोता गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये शिकायत उन्हीं के लिए है। प्लीज ऐसा मत करिए, किसी को भी बुरा लगता है और मुझे भी लगता है। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता का मैसेज हमें पहुंचा है, और हमें लिखा है हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा ने, दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का ईमेल, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबिता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट का मैसेज हमें मिला है, और हमें लिखा महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। ये मैसेज PS नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर का, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से सुपान ताइडे, नारायण इंगले और आशीष मोहिरकर का मैसेज। और हमारे पास ढेर सारे और भी ईमेल्स पहुंच रहे हैं। संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया ने हमें बागपत उत्तर प्रदेश से लिखा है, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से हमें लिख रहे हैं, सुधाकर राज जाधव, डॉक्टर प्रशांत राज जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख और सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और हर्षिता देशमुख और पूरे देशमुख परिवार ने हमें ये मैसेज किया है। इसके अलावा सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक का अनारकली बाजार जगराओं से हमें मैसेज पहुंचा है, और ये देखिए, एक बार दूसरे डिजाइन से और फिर दूसरे डिजाइन से आप मैसेज भेजते हैं, ऐसा मत करिए। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य, मेघा मस्कीन का मैसेज, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना का मैसेज, और हमें लिखा है फिर से देखिए, मैं कितनी बार कहूं कि ऐसा मत करिए। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा का मैसेज, और फिर से देखिए, मैं बार बार आपके मैसेजेस देख रही हूं और सेम मैसेज मुझे मिल रहे हैं। अपर कोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे अब्बासी परिवार का हमें मैसेज मिला है, और हमें सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी ने लिखा है पदमा टॉकीज नेपा नगर से, और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है शेरवानी स्कूल गंज टुंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का, और अशोक कुमार विद्यार्थी, मधु, दीपिका विद्यार्थी, हेमंत, हर्ष, निशा, मयूर विहार से, फेस थ्री से हमें लिख रहे हैं, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम का हमें सहारनपुर से मैसेज मिला है, और हमें लिखा है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से, आफताब, ये तो फिर से हो गया, और उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का नई दिल्ली से मैसेज, मोहम्मद अमीन का मैसेज मिला है टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री के साथ, अमर रमेश कुमार खत्री का हमें लिखा है चानेसर गोट कराची से, और सतप्रकाश सनोठिया ने रोहिणी से लिखा, पंकज मोहड अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, और दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का हमें मैसेज मिला है रघुबीर नगर दिल्ली से। बहुत सारे मैसेजेस हैं जो कि सेम हैं और मैं उन्हें स्किप कर रही हूं। नवाब अहमद भारती, शबाना भारती का मैसेज भी हमें मिला है सोफिया रहान के साथ, बली मारान दिल्ली से। बाकी के मैसेजेस को भी शामिल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं, और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती कुमारी, ओम कुमार ने, अमर प्रेम फिल्म से ये खूबसूरत गीत किशोरदा की आवाज में आपने सुनना चाहा है, ये रहा।

और अब जल्दी से कुछ और ईमेल्स को भी शामिल कर लेते हैं। आदत तो आपकी वही है, बहुत सारे लोग रिपीट मैसेजेस भेजते हैं और मैं बार बार यही कहती हूं कि मत भेजिए, एक ही मैसेज काफी है। बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम आशीष का हमें मैसेज मिला है पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। और इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू और धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी के साथ ही हमें लिख रहे हैं। मास्टर खिल्लू, परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख और दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव का लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज पहुंचा है। इंदिरा नगर भवरपुर से हमें राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन का मैसेज पहुंचा। भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, संस्कृति पौरुष का व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, और शाहरुख फारूक, शबनम शाहनाज का नजफगढ़ जयविहार से, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर पारुल मेरठ से हमें लिख रहे हैं विवेक वर्धन के साथ, और प्रवीण हागोणे, योगिता हागोणे, कुमारी प्रियाली हागोणे और पार्थ और पूरे परिवार ने हमें लिखा है अमरावती महाराष्ट्र से, और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो का जनकपुरी सहारनपुर से मैसेज। साथ ही हमें विद्युत गोयल ने रोहिणी दिल्ली से लिखा है, और प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा का तिलकराज अरोड़ा के साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से मैसेज पहुंचा है। साथ ही हमें लिखा है वीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार ने, और ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत कमल, साहनी पिंगावाला चौक, कोराया, जालंधर से हमें लिख रहे हैं। और इसके अलावा ये मैसेज फिर से रिपीट है, रमेश, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और गोटना जैन का हमें मुल्लापुर दाखा से मैसेज पहुंचा है। मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ हाशमी और कली मंसारी का हमें बस्ती, नई बस्ती गंजरुंडवाड़ा से मैसेज मिला। और हमें लिखा है किसने ये मैसेज, हमें फिर से देखिए रिपीट मैसेजेस हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल, अविराज सिंह का हमें गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से मैसेज पहुंचा। साथ में हमें लिखा खैलबाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, नानक चंद मल्होत्रा का, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हमें पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का का मैसेज मिला। और इसके अलावा हमें ये लिखा है अतर सिंह करदम का मैसेज हमें मिला है, राजकुमारी अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल आद्विक और समयपुर दिल्ली से सब लिख रहे हैं हमें। इसके अलावा प्रदीप सलूजा ने जनकपुरी से मैसेज लिखा है, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना का मैसेज हमें मिला। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा का मैसेज हमें मिला। और ढेर सारे मैसेजेस हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और मैसेजेस को शामिल करूं, देख रही हूं कि रिपीट मैसेजेस बहुत सारे हैं, तो कोशिश करिए कि दोबारा दोबारा ना लिखिए। अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का हमें मैसेज मिला है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, और मोहम्मद कली मंसारी, बेगम जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी का गंजरुंडवाड़ा से, लगता है ये दोबारा से पढ़ रही हूं मैं, बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। जगदीश कुमार, राहुल, रितिका, नांगलोई से हमें मैसेज लिख रहे हैं, और अब जो भी मैसेज अगर बचेंगे तो कोशिश रहेगी शामिल करूं, लेकिन फिलहाल एक गीत शामिल करती हूं। और इसकी फरमाइश हमें भेजी है महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, राजवीर, अनन्या गायकवाड़ ने, तो ये रहा आपकी पसंद का गीत छुप गए सारे नजारे।

और इसी के साथ सरोज बंसल, अनूप कुमार, अनूप कौर और गुरुग्राम से हमें लिख रहे हैं। साथ ही अब वक्त हो चुका है इस सफर से विदा लेने का, तो मैं रेखा फिर से मिलूंगी आपसे 11:10 पर, और तब रहेगा वक्त एक स्पॉन्सर प्रोग्राम का, और उसके ठीक बाद हम चलेंगे तस्वीर के सफर में। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व

0: दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़े कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरूपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं और संगठनों की सराहना की। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के स्टार्ट की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. UP police has arrested 8 people named in the first FIR filed in Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case. The FIR was filed following recommendations made by the special investigation team constituted on the directions of Chief Minister Yogi Adityanath. The case came to light after allegations of theft involving offerings and donations received by the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust emerged. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from tomorrow to the 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands and discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable while enhancing ease of living and empowering people at scale. In a social media post, Mr. Modi said, India remains committed to sharing its experience with partner countries.

0: मसूद के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि हमारा लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे हैं तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले हैं तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में फिर मिल रहा है, सिला क्या है, इनाम क्या है, मुझे बताओ मेरा मकाम क्या है। कभी मुझसे सुनो लाडलो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी, मुझसे पूछो कहाँ गई मेरी वो रंगों भरी जवानी।
1: तो याद रखना, तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूँ ये करते करते गुजार दी है। गुजरी है तो सोचता हूँ, गुजर रही है तो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है।
0: दोस्तों, फादर जिंदगी का वो एहसास है, वो वजूद है जिसके बिना किसी की जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गोद में खिलाने से लेकर उंगली पकड़कर चलना सिखाना और फिर जिंदगी की राह में आगे बढ़ाते चले जाना, यही सपना हर पिता की आंखों में हमेशा समाया रहता है।
1: पिता वो छांव है जो धूप में भी ठंडक देती है। जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए, पिता का एक हाथ जब कंधे पर आ जाता है और लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे पापा है ना मुझे संभालने के लिए।

0: जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.meravazood.com पर।
3: पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, उनकी हर बात में एक सबक होता है और ये बात हमें समझ आती है जब जब हम खुद अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं। फादर वो इंसान जो हमेशा हमें सब कुछ देता रहा, उसे भला हम क्या ही दे सकते हैं।
4: माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ, पवित्र और अटूट बंधन है। ये वो ढाल है जो बिना किसी शर्त के बच्चे के हर कदम पर उसका समर्थन करती है, उसे जीवन के अच्छे मूल्य सिखाती है और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है।
3: बचपन की बातें तो हम में से बहुत से लोगों को याद होंगी। वो जब हमें कहीं घुमाने ले जाते थे तो अक्सर घूमते घूमते जब हम थक जाते थे तो

0: पापा को बहुत प्यार से कहते थे, पापा बहुत थक गया हूँ, अब नहीं चल सकता। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा जाते थे,
1: फिर प्यार से आगे बढ़ते और मुझे अपने कंधों पर बिठा लेते थे। पापा के कंधों पर बैठकर ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया में मुझसे ऊपर अब कोई नहीं है।
0: किसी मंदिर में भगवान के दर्शन ना हो तो भी वो हमें अपने कंधों पर उठाकर भगवान के दर्शन करवाते थे। लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि जिसने मुझे अपने कंधों पर उठाया है, असली भगवान तो यही है।

0: सारा दिन बस नाश्ता, लंच और डिनर। सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया? क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.मेरावजूद.com पर।
2: प्यार के इस खूबसूरत रिश्ते की एक और पहचान भी है, बेटी और पिता का रिश्ता। पापा की परी, पापा की लाडली, पापा का अच्छा बेटा और ना जाने ऐसे कितने ही नाम जो बेटियों को पापा से मिलते हैं। बेटियों को देखकर पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है
3: और पापा को देखकर बेटियों के चेहरे पर जो रौनक आती है उसको शब्दों में बयान करना असंभव है। पापा के चेहरे पर कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, पर बेटी की एक झलक, उसका मासूम सा चेहरा देखकर पापा की सारी टेंशन पलक झपकते ही गायब हो जाती है।
2: शायद इसीलिए ही बेटियों को पापा की लाडली कहते हैं। बेटियां भी पापा को प्यार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पापा की परियां अपने पापा के चेहरे पर प्यारे से मुस्कान देखने के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती हैं।
3: कभी अपनी मासूमियत से उनका मन मोह लेती है तो कभी जी जान लगाकर अपने पापा का सपना पूरा कर उन्हें गर्व महसूस कराती है।
2: तो कभी बेटियां बाप की आंखों में छुपे ख्वाब को पहचानती हैं और कोई दूसरा अगर इस ख्वाब को पढ़ ले तो बुरा भी मान जाती है।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
0: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355387 21 पर।
2: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
0: जीवन में हम उसे दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछ कर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16 सेक्टर 41 नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravazood.com पर।
0: एक बार फिर शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड 100.1 पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
0: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये है तस्वीर और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्षरेखा क्रिस्टल वॉइस और इस सफर में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम और आप साथ साथ। आज कहां की सैर पर लेकर चलूंगी जरूर बताऊंगी। कहते हैं हर शहर का अपना रंग होता है, अपनी तहजीब अपनी पहचान होती है और यही उसकी आत्मा होती है। और आज हम जिस शहर की तहजीब और विरासत से मिलने जा रहे हैं वो है भुवनेश्वर। जी हाँ, उड़ीसा का भुवनेश्वर, जहां आज आप और हम चलेंगे साथ साथ इस जगह की सैर पर। ये शहर किसी जमाने में 7000 मंदिरों का घरौंदा हुआ करता था। आज भी वही विरासत यहां की हवा में है। भगवान शिव के नाम त्रिभुवनेश्वर, जी हाँ त्रिभुवनेश्वर के नाम पर इसका नाम भुवनेश्वर रखा गया था और इसी वजह से आज भी इसे भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां पर भगवान शिव की आराधना आज भी की जाती है। भुवनेश्वर के सबसे प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर में भगवान शिव अपने दर्शन देते हैं। उनका महत्व इतना है कि हर दिन भारत और विदेश से करीबन 6000 श्रद्धालु भगवान को दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। बहुत कुछ है इस जगह के बारे में जानने के लिए, लेकिन शुरुआत करते हैं इस सफर के प्यारे से गीत के साथ और उसके बाद बताऊंगी भुवनेश्वर के बारे में बहुत कुछ। जुड़े रहिएगा मेरे साथ तस्वीर के इस सफर में। आपकी दोस्त आर्षरेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। आज इस सफर में 11:27 और 36 सेकंड हो चुके हैं।

में परदेसी मत होइए, देश के कोने कोने को देखिए और जानिए कि कितना खूबसूरत है अपना भारत। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर भारत के उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में एक खास व्यापारिक केंद्र और धार्मिक केंद्र है। अक्सर टेम्पल सिटी कहा जाने वाला भुवनेश्वर दो अलग ओडिशा शहरों पुरी और कोणार्क के साथ स्वर्ण त्रिभुजा बनाता है। और इतना ही नहीं, भुवनेश्वर में कुछ प्रतिष्ठित स्मारक और सुंदर प्राकृतिक आकर्षण भी हैं। भुवनेश्वर में आपको उदयगिरी और खंडगिरी जैसी ऐतिहासिक गुफाएं, लिंगराज मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर और बीजू पटनायक पार्क जैसे सुंदर उद्यान देखने को मिल जाएंगे। भुवनेश्वर में और क्या क्या खास है, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ इस पूरे सफर में रहना होगा। भुवनेश्वर में उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं जो कि भुवनेश्वर से कुछ मील की दूरी पर स्थित है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं रॉक कट गुफाएं हैं जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें जैन भिक्षुओं ने बनाया था। गुफाएं एक दूसरे से सटी हुई हैं और इनकी दीवारों पर शिलालेख लिखे हुए हैं। दो गुफाओं के भीतर कई छोटी गुफाएं भी हैं जिनमें खास तौर पर पत्थर की नक्काशी, पैरों के निशान और मूर्तियां हैं। खंडगिरी पहाड़ी पर आप एक खूबसूरत जैन मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, तो ये जगह सचमुच देखने लायक है, इसे बिल्कुल मत चूकिएगा देखने से। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर भी है जो कि सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और लिंगराज मंदिर शहर के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। 7वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर धार्मिक रूप से भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव के भौतिक रूप को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके बारे में माना जाता है कि ये इस जगह से खुद प्रकट हुआ था। कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण ययाति केसरी ने करवाया था। ये शहर के लोकप्रिय मंदिरों में से एक है और पूरे भारत में सबसे बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। टावर की ऊंचाई 180 फीट है और गर्भगृह के अंदर 8 इंच का शिवलिंग है। मंदिर विदेशी पौधों और बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ एक सुंदर बगीचे से घिरा हुआ है, तो इस मंदिर की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भुवनेश्वर में एक शांति स्तूप भी है। शांति स्तूप को शांति शिवालय भी कहा जाता है और इसे 70 के दशक में जापान बुद्ध संघ और कलिंग निपोन बुद्ध संघ द्वारा बनाया गया था। ये भुवनेश्वर पुरी के रास्ते में से लगभग 7 किलोमीटर दूर धौलीगिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। कई पर्यटक और स्थानीय लोग इस स्थान पर ध्यान और प्रार्थना करने के लिए आते हैं। शांति स्तूप स्तूपों से घिरा हुआ है और माना जाता है कि ये राजा अशोक के शासनकाल के समय का है। पौराणिक कथाओं की माने तो प्रसिद्ध सम्राट अशोक ने यहां धौलागिरी में भगवान बुद्ध को अपनी तलवार भेंट कर युद्ध त्याग दिया था। और अगर मैं बात करूं तो आप जा सकते हैं भुवनेश्वर में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ये भी अपने आप में बहुत खास है। कई प्रमुख चिड़ियाघरों में से जो भारत में मौजूद हैं उनमें से एक है जो इसे भुवनेश्वर में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक बनाता है। चिड़ियाघर पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण से घिरा हुआ है, भरा हुआ है, जो एक जंगल के भीतर बनाया गया है। चिड़ियाघर में लॉयन सफारी, बोटिंग और केबल कार जैसी कई ऐसी गतिविधियां हैं जो आप कर सकते हैं। प्रकृति और जानवरों के प्रति रुचि रखने वालों के लिए ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। आपने सफेद बाघ और स्तनधारियों, सरीसृपों और पक्षियों की विशाल विविधता अगर देखनी हो तो यहां पर आप पहुंच सकते हैं। लोकप्रिय चिड़ियाघर हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है, चंडका जंगल के बीच स्थित है और आप चिड़ियाघर के भीतर एक विदेशी किस्म की वनस्पतियों को भी यहां पर देख पाएंगे। तो भाई अपने आप में ये जगह भी बहुत खास है। आप चाहें तो कलाकृतियों का संग्रहालय भुवनेश्वर, जनजातीय कला और संस्कृतियों कलाकृतियों का संग्रहालय है, यहां पर भी जा सकते हैं, यानी म्यूजियम ऑफ ट्राइबल आर्ट्स एंड आर्टिफैक्ट्स इन भुवनेश्वर। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के पास जनजातीय कला और कलाकृतियों का संग्रहालय है ये, जहां पर ऐसी चीजों का संग्रह आपको मिल जाएगा और ये म्यूजियम देश के सर्वश्रेष्ठ जनजातीय संग्रहालयों में से एक के रूप में लोकप्रिय है। 1953 में स्थापित संस्था अनुसूचित जाति और जनजाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत आती है, जो आदिवासी संस्कृति को विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से काम करती है। लोग यहां पर संग्रहालय के 5 अलग अलग हॉल्स में घूम सकते हैं जो स्थानीय जनजातियों, उनकी संस्कृति और जीवन शैली के प्रदर्शन के लिए समर्पित है। यहां कपड़े, गहने, संगीत, वाद्य यंत्र, हथियार, घरेलू वस्तुएं, कला, तस्वीरें, बहुत कुछ है जिनकी प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है यहां घूमने के लिए, लेकिन इस गीत के बाद आपको बताऊंगी। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। फिलहाल ये गीत आशा जी और रफी साहब की आवाज में।

0: एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी जहां विजय सुनते रहे तस्वीर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
2: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
3: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
2: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं।
4: मीडियम वेव को 213.67 मीटर अर्थात 1404 किलोहर्ट्जमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ट्जबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता समय यस बेला हाम्रो स्टुडियो घड़ी अनुसार 11:40 भइसकेको छ र यहाँहरू समक्ष अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम नारी संसार।

0: यहाँहरूले सुनिरहनु भएको थियो कार्यक्रम नारी संसार अन्तर्गत विभिन्न गायक कलाकारहरूको आवाजमा सजिएका गीतहरूलाई, जसको निर्धारित समय यही पूरा हुँदछ। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं र अब श्रोताहरूले सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट हिन्दी पाठ भाषा, विषय छ विशेषण और उसकी भेद।
1: नमस्ते गुरुआमा।
2: नमस्ते सुनिता र अन्जु। आज हामी एउटा नयाँ अनि चाखलाग्दो विषय लिएर आएका छौँ। तिमीहरू भन्न सक्छौ त्यो विषय कुन हो?
1: भन्न सक्छौ गुरुआमा,
3: त्यो विषय विशेषण हो।
2: त्यसो भए तिमी भन सुनिता, विशेषण भन्नाले के बुझिन्छ?
3: गुरुआमा, किसी वाक्य में शब्दों के गुण या विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं।
2: अन्जु, तिमीले विशेषणलाई कसरी वर्णन गर्छौ?
4: गुरुआमा, जसबाट विशेष्यको गुण वा अवस्थाको बोध हुन्छ त्यसलाई विशेषण भन्दछन्।
2: लौ, अब हामी पुस्तकमा हेरौँ। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, अर्थात जसबाट विशेष्यको गुण या अवस्थाको बोध हुन्छ त्यसलाई विशेषण भन्दछ। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में काली और अधिक विशेषण बता रही है, क्योंकि इस शब्द से हमें पता चलता है कि गाय काली रंग की है और अधिक दूध देती है। बुझो तिमाले?
1: बुझो गुरुआमा।
2: अब हामी अर्को उदाहरण हेरौं।
4: हुन्छ गुरुआमा।
2: केही बुझेन भने सोध्न सक्छौ।
1: होइन गुरुआमा, बुझ्यो।
2: लौ सुन है त, वह ऊंचा भवन किसका है? इस वाक्य में ऊंचा विशेषण है, क्योंकि ऊंचा संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहा है। कुछ विशेष ज्ञान होने के कारण इस शब्द को विशेषण कहा गया है।
4: ग्रामा अझै दोहराई दिनुस् न।
2: ध्यान दिएर सुन है त, कुछ लोग बाहर से आए हैं, इस वाक्य में लोग आए हैं, कितने आए हैं? कुछ लोग आए हैं, इसलिए कुछ विशेषण है। समझ गए ना तुम सब? अगर इस वाक्य में कुछ नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितने लोग आए हैं, अर्थात कुछ लोग बाहर से आए हैं। इस वाक्यमा कुछ शब्दलाई विशेष ध्यान दिएको छ, त्यसै कारण हामीले कुछ शब्दलाई विशेषण भनेको। बुझ्यौ?
4: बुझ्यो गुरुआमा।
2: तिमी भन सुनिता, एक किलो चावल लाओ वाक्यमा विशेषण कुन हो?
3: गुरुआमा, इस वाक्य में एक किलो विशेषण है।
2: अन्जु तुम बताओ, सुनिता का उत्तर सही है?
4: हाँ गुरुआमा, सुनिता ने एकदम ठीक कहा, क्योंकि इस वाक्य से हमें पता चलता है कि चावल एक किलो है।
2: शाबाश, तुम सब ने सही उत्तर दिया। अब हम विशेषण और विशेष्य की ओर ध्यान देंगे। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में गाय विशेष्य है, क्योंकि यह गाय की विशेषता बताई गई है। अब हमें और को उदाहरण हेरौ।
1: हुन्छ गुरुआमा।
2: जैसे एक किलो चावल लाओ, इस वाक्य में चावल विशेष्य है, क्योंकि यह वाक्य हमें चावल की तरफ संकेत करता है। तुम बताओ सुनीता, काला घोड़ा सो रहा है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है?
3: गुरुआमा, काला घोड़ा सो रहा है, इस वाक्य में घोड़ा विशेष्य है।
2: शाबाश, तुमने एकदम ठीक कहा। हमेशा ध्यान रखो, विशेष्य प्राय विशेष्य के पहले लगाया जाता है, परंतु कभी कभी विशेष्य के बाद भी इसका प्रयोग होता है। बुझो तिमाले?
4: बुझो गुरुआमा।
2: विशेषण के कितने भेद होते हैं सुनीता, और नाम बताओ?
3: गुरुआमा, विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
2: शाबाश, तिमीले एकदम ठीक भन्यौ। अब ध्यान दिएर सुन है त, गुणवाचक विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बुझो?
1: बुझो गुरुआमा।
2: अब तुम बताओ, अनपढ़ लड़की में गुणवाचक कौन सा है?
4: अनपढ़ गुरुआमा।
2: शाबाश, तुम बताओ अंजु, गोल, चौरस, चौड़ा, लंबा क्या बतलाता है?
3: गुरुआमा, ये सब चेहरे का आकार बताता है।
2: भाना सुनीता, भारतीय, पंजाबी, नेपाली, प्राचीन, जापानी ले के बुझिन्छ?
4: गुरुआमा, भारतीय, पंजाबी, नेपाली, प्राचीन, जापानी यी सबै जाति सम्बन्ध बुझाउने शब्द हो।
2: तिमीहरूले सही उत्तर दियौ, शाबाश। अब हामी अर्को भेद हेरौं। त्यो अर्को भेद कुन हो सुनिता?
4: ग्रामा परिमाणवाचक विशेषण।
2: परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बुझो?
4: बुझे न ग्रामा, अलिक विस्तार पूर्वक भनिदिनु होस् न।
2: लौ सुन है त, आफ्नो विशेष्यको यति भन्ने केही परिमाण बुझाउने विशेषणलाई परिमाणवाचक विशेषण भन्दछन्। जस्तै छोटे बालक, अलिकति पानी, तमाम जन्ती, आधा काम इत्यादि मा छोटे, अलिकति, तमाम, आधा शब्द परिमाणवाचक विशेषण हुन्, किनकि यिनले संज्ञाको परिमाण बुझाउँछन्। लौ अब तिमी भन त अन्जु, 10 लिटर तेल में परिमाणवाचक कौन सा है?
5: ग्रामा 10 लिटर तेल में परिमाणवाचक 10 लीटर है।
2: शाबाश, परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा व सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, जैसे 4 लीटर दूध, 1 क्विंटल गेहूं, 10 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना। दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ आम, थोड़ा दूध, बहुत घी, कम चीनी आदि। बुझ्यो?
1: बुझ्यो ग्रामा।
2: त्यसो भए भन त, परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं?
5: ग्रामा परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित।
2: शाबाश, निश्चित परिमाणवाचक का एक उदाहरण दो सुनीता।
4: ग्रामा 10 ग्राम सोना, इसमें 10 ग्राम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है।
2: शाबाश, तुम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का एक उदाहरण दो अंजू।
5: ग्रामा कम दूध, इसमें कम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है।
2: शाबाश। लो अब हमें अर्को भेद हेरौ, त्यो अर्को भेद कुन हो सुनीता?
4: ग्रामा संख्यावाचक विशेषण।
2: संख्यावाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
4: उदाहरण दिनुहोस् न ग्रामा।
2: जस्तै 1, 2, 3 इत्यादि शब्द संख्या विशेषण हुन। बुझ्यो?
4: बुझ्यो ग्रामा।
2: संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक।
5: ग्रामा परिमाणवाचक विशेषण की तरह?
2: हाँ, परिमाणवाचक की तरह इसके भी 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 2 लड़के, 4थी मंजिल आदि, और अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ आदमी, थोड़े घर आदि। कुछ, थोड़े आदि कुछ विशेषण ऐसे हैं जो परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। यदि विशेष्य गिनी जाने वाली वस्तु है तो उन्हें संख्यावाचक मानना चाहिए, अन्यथा परिमाणवाचक। अधिक आम और अधिक घी, इन 2 प्रयोगों में पहला अधिक संख्यावाचक है और दूसरा परिमाणवाचक। बुझो?
1: बुझो ग्रामा।
2: निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के कई भेदांतर किए गए हैं। गणना सूचक, कर्म सूचक, आवृत्ति सूचक, समुदाय सूचक और प्रतीक सूचक, यानी कि 5 भेदांतर है। समझ गए?
1: समझ गए गुलामा।
2: गणना सूचक वस्तुओं या प्राणियों की गणना का ज्ञान करवाते हैं, जैसे 2 घोड़े, 12 ईंटें, 4 फल आदि। अर्थात जिस वस्तुलाई हामी गणन गर्न सक्छौ त्यसलाई गणना सूचक भन्दछौ। जस्तै 4 वटा माला, 18 पुस्तक आदि। बुझ्यो?
1: बुझ्यो ग्रामा।
2: त्यो अर्को भेदान्तर के हो अन्जु?
5: ग्रामा कर्म सूचक।
2: कर्म सूचक जो कर्म का ज्ञान करवाते हैं, जैसे 3रा व्यक्ति, 1री श्रेणी, 2री मंजिल आदि। तिमी भन अर्को भेदान्तर के हो सुनिता?
4: ग्रामा आवृत्ति सूचक जो गुना का बोध कराता है, जैसे 2गुना, 3गुना, 4गुना आदि।
2: तिमी भन अर्को भेदान्तर के हो अन्जु?
5: ग्रामा समुदाय सूचक
2: जो समूह का ज्ञान कराए, जैसे 4ों फल, 1 ग्रुस पेंसिल आदि। समझ रहे हो ना तुम सब?
1: हाँ ग्रामा।
2: सुनीता तुम बोलो, पांचवा भेदांतर कौन सा है?
3: ग्रामा प्रत्येक सूचक।
2: हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, प्रत्येक सूचक जो समूह में से प्रत्येक का बोध कराए, जैसे हर घड़ी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रति वर्ष आदि। बुझ्यो?
1: बुझ्यो ग्रामा।
2: त्यसो भए भन त अन्जु, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं?
5: गुरामा, जो शब्द किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
2: शाबाश, तुम बताओ सुनीता, इसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से?
3: ग्रामा, संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक।
2: अंजु, अनिश्चित संख्यावाचक का एक उदाहरण बताओ।
5: गुरामा, जैसे कुछ आदमी, बहुत घर।
2: शाबाश, तुम निश्चित संख्यावाचक का एक उदाहरण दो सुनीता।
3: ग्रामा, पांच लड़के।
2: निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं और नाम बताओ सुनीता।
3: ग्रामा, गणना सूचक, कर्म सूचक, आवृत्ति सूचक, समुदाय सूचक और प्रत्येक सूचक।
2: शाबाश, अब हम विशेषणों के चौथे भेद पर ध्यान देंगे। चौथा भेद कौन सा है अंजु?
5: गुरामा, सार्वनामिक विशेषण।
2: जो सार्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह पुस्तक मेरी है, कोई आदमी आ रहा है, कौन लोग आए हैं। इन वाक्यों में यह, कोई और कौन, सर्वनाम और पुस्तक, आदमी, लोग संज्ञाओं की विशेषता बताने के कारण विशेषण हो गए हैं। अर्थात और को विशेष्य राखी त्यसको विशेषण बनाई प्रयोग करे त्यो उ जो को यी सर्वनाम शब्द स्वरूप विशेषणलाई सार्वनामिक विशेषण भन्दछन्। यस्ता सार्वनामिक विशेषण मुख्य तीन प्रकार का हुन्छन्। पहिलो दर्शक, दोस्रो सम्बन्धी र तेस्रो प्रश्नार्थक। दर्शक विशेषण, नामको अघि आएर त्यसलाई तोक्ने विशेषणलाई दर्शक विशेषण भन्दछन्। जस्तै त्यो उ यो। बुझ्यौ?
1: बुझ्यौ ग्रामा।
2: त्यसो भए तिमी दर्शक विशेषणको एउटा उदाहरण देऊ त सुनिता।
3: ग्रामा, जस्तै यो पुस्तक मेरो हो, यस वाक्यमा यो दर्शक विशेषण भयो, होइन ग्रामा?
2: तिमीले ठिक भन्यौ। तिमी भन अन्जु, एउटा अझै उदाहरण देऊ त।
5: सक्छु गुरामा, जस्तै त्यो घर मेरो हो, यस वाक्यमा त्यो विशेषण भयो।
2: अब हामी अर्को सार्वनामिक विशेषण हेरौं, त्यो अर्को कुन हो सुनिता?
3: ग्रामा, सम्बन्धी विशेषण।
2: सम्बन्धी विशेषण, नामको अघि आएर त्यसको दुवैतिर सम्बन्ध गराई दुई वाक्यलाई जोड्ने विशेषणलाई सम्बन्धी विशेषण भन्दछन्। जस्तै जो, जुन, यस, त्यस इत्यादि। अर्थात जो शब्द दो वाक्यों का सम्बन्ध बनाए उसे हम सम्बन्ध विशेषण कहेंगे। बुझ्यो?
1: बुझ्यो ग्रामा।
2: जुन शब्दले वाक्यको सम्बन्ध बनाउँछ त्यसलाई हामी सम्बन्ध विशेषण भन्छौँ, होइन?
3: हो ग्रामा।
2: अर्को सार्वनामिक विशेषण हो प्रश्नार्थक विशेषण। नामको अघि आएर प्रश्न बुझाउने विशेषणलाई प्रश्नार्थक विशेषण भन्दछन्। जस्तै कि, के, कुन इत्यादि। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो।
5: नहीं गुरामा, सब समझ गए।
2: अच्छा तो तुम बताओ, विशेषण किसे कहते हैं?
3: ग्रामा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं।
2: वह ऊंचा भवन किसका है? इस वाक्य में विशेषण कौन सा है सुनीता?
3: ग्रामा, ऊंचा।
2: जरा वर्णन करके बताओ।
3: ग्रामा, ऊंचा शब्द विशेषण बताता है क्योंकि इस शब्द से भवन छोटा या बड़ा पता चलता है।
2: शाबाश, अंजु, विशेषण के कितने भेद होते हैं?
5: गुरामा, विशेषण के चार भेद होते हैं।
2: सुनीता, नाम बताओ।
3: गुरामा, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण।
2: गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण देकर बताओ अंजु।
5: जस्तै रातो लुगा, पढेको मानिस, राम्रो नानी, यसमा रातो, पढेको, राम्रो इत्यादि गुणवाचक विशेषण हुन्।
2: शाबाश, तुम बताओ, अनपढ़ लड़की में गुणवाचक कौन सा है सुनीता?
3: ग्रामा, अनपढ़।
2: परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं?
3: ग्रामा, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
2: एक उदाहरण बताओ अंजु।
5: ग्रामा, जैसे 10 लीटर तेल, 5 किलो चीनी में 10 लीटर और 5 किलो परिमाणवाचक विशेषण है।
3: शाबाश, ये कितने प्रकार के होते हैं?
5: गुरामा, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित।
3: शाबाश, संख्यावाचक का एक उदाहरण बताओ सुनीता।
4: जस्ते, करोड़ों, हजारों, लाखों।
3: संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं?
5: गुरामा, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित।
3: संख्यावाचक विशेषण के भेदांतर के नाम बताओ।
4: गणना सूचक, कर्म सूचक, आवृत्ति सूचक, समुदाय सूचक और प्रत्येक सूचक।
3: शाबाश, तुमने एकदम सही कहा। र साथै अब त समय पनि हुन लागेछ। आजको पाठ यही समाप्त गरौं हैन?
4: हुन्छ ग्रामा।
1: धन्यवाद।
3: धन्यवाद नानी हो।
0: यहाँहरूले सुनिरहनु भएको थियो हिन्दी भाषामा पाठ, विषय रहेको थियो विशेषण सम्बन्धी केही जानकारी, विशेषण और उसकी भेद। त श्रोता, अब सुन्नुहोस् आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे।

0: कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहां पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।

0: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you.
3: Happy birthday to you, Stephen.
4: Thank you. How are you?
5: Happy birthday, Stephen.
6: Thank you.
5: Congratulations.
6: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
6: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
2: Come.
3: Yeah.
2: Hey.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure.

जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव।

0: भाव। उन्होंने कहा,
1: अभी मैं जीना चाहता हूं, तो दो साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
0: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थी। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुई। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई, जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं

0: कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
1: प्रोफेसर डेनिस
2: जी,
1: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
2: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
1: ओह।
2: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
1: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
2: जी।
1: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
2: तो लीजिए, सुनिए।
3: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
7: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
8: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद

0: सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
1: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली।
4: हाँ।
3: गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
5: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
4: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
6: रोज बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
6: अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
4: हाँ।
3: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही एकदम सही।
9: वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, बहुत अच्छे शाबाश बहुत अच्छे।
6: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ हाँ बिल्कुल,
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
6: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ।
8: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
3: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
6: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
6: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
9: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
9: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
3: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना।

0: बड़ा भी होता है,
1: बहुत बड़ा होता है,
2: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कहीं
0: दूर होता है इसलिए,
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
0: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ,
2: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
1: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
0: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
2: नहीं
1: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
3: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है,
3: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके,
3: धरती काटे चक्कर इसके,
1: लगे ये चलता जाता है,
3: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे,
3: सर्दी गर्मी बनते इससे,
1: ये दिन रात बनाता है,
3: ये दिन रात बनाता है।
1: देह प्रकाश पर नहीं है दीपक,
3: देह प्रकाश पर नहीं है दीपक,
1: सूरज ये
3: कहलाता है।
1: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
2: मैं जल्दी आना मौसी।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ।
0: वो भी दस पूछेंगे,
1: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
0: है। आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
1: 70 हो जाएंगे, वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे,
1: 100 हो जाएंगे, 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: यहाँहरूले सुनिरहनु भएको थियो प्रायोजित कार्यक्रम। श्रोता अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट विविध भारती सेवा।
5: श्रोता कहते हैं कि हमारे गांव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था, लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होंठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की और अभी भी जब भी कोई गाना खत्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं और इसके अलावा एक श्रोता है जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता है जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही है कि इतना समय ही कहां कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे। और इसके अलावा कई और श्रोता है जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतजार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं, कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता को ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी, जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था, जब मैं कोचिंग जा रहा था, रोड के किनारे काफी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं, लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं, इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये कहते हैं कि कहां गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये सारी चीजें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए हैं। ओहो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियां एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन काफी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूं, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीगकर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है, और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताए।

भाई, ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो पुराना, वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, उस ऊंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: care and economic participation. The minister also reaffirmed the country's readiness to share experiences and deepen cooperation with SCO partners in advancing women's economic leadership and well-being across the region. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. In Venezuela, the death toll in two powerful earthquakes has risen to 235. More than 1,500 people have been injured. Rescuers are searching through rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital yesterday. In Caracas and the nearby coastal city of La Guaira, people could be heard calling for help from under the debris of collapsed buildings. The first 7.2 magnitude quake was followed seconds later by an even stronger 7.5 magnitude one, both occurring close to the surface, making the destruction more severe. German Ambassador to India Philip Ackermann has said India has emerged as a global leader in renewable energy. Talking to a news agency, Mr. Ackermann underscored the success of the Partnership for Green and Sustainable Development between India and Germany, highlighting robust cooperation across trade, political and strategic sectors. Addressing the long-awaited India-EU Free Trade Agreement, FTA, Ambassador Ackermann expressed optimism for a swift resolution. He said the FTA represents a huge game changer that will significantly incentivize more investment in India from German businesses. Sweltering temperature is shattering records across Europe as the continent battles with a deadly heat wave. The heat wave has disrupted power supplies and forced the closure of schools and cultural landmarks. France endured its hottest days in history this week, with western regions witnessing temperature ranging between 39 to 43 degrees Celsius. Wednesday was the United Kingdom's warmest June day on record, with the mercury climbing to 36.1 degrees Celsius. Spain, Germany, Austria, the Netherlands and Switzerland have all broken June temperature records at several locations. Several lives have been lost, including dozens of people who have drowned in France in the past week while trying to cool down in the punishing heat. United Nations climate change chief Simon Steele has said Europe's heat wave has the fingerprints of the climate crisis all over it. He called for a faster shift to renewables, protecting forests and boosting climate resilience. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Bihar, coastal Andhra Pradesh, coastal Karnataka, Konkan, Goa, central Maharashtra and some parts of northeastern India. IMD said conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand in the next 3 to 4 days. The Met Department has also forecast heat wave conditions at isolated places over Jharkhand and East Uttar Pradesh today. Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in various parts of the country today. The day marks the martyrdom of Hazrat Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad. Hazrat Imam Hussein laid down his life for upholding truth, righteousness and justice in Karbala. Taziyah processions are being taken out to mark the occasion. Prime Minister Narendra Modi today recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussein in a social media post. He said Hazrat Imam Hussein continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice. In Delhi, Muharram processions are being held in different locations, including Jama Masjid, Nizamuddin, Okhla and Mehroli. In men's cricket, India will take on hosts Ireland in the first T20 international of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. The series marks the start of a new T20 cycle for India, who will be playing its first T20 international since lifting the T20 World Cup. Captain Shreyas Iyer will lead a young squad that includes 15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussein on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया अब समाचार विस्तार से गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की श्री शाह ने यह बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए
1: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधीय सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
4: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
5: For our business,
6: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार हैं।
5: 60,000 students.
6: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मोहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
7: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।
8: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा SIR अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
9: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026 BLO-हरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
8: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
9: 1 जुलाई 2026 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
8: फारम ECINET एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
9: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
3: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं र श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई न्यूज अन AIR मोबाइल एप मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोताहरूले अब सुन्नुहुनेछ नेपाली लोकगीतहरू। नेपाली लोकगीतको पर्खाईमा बसिरहनु भएको तमाम श्रोतालाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन जनाउन चाहन्छौ। आज कार्यक्रममा लिएर आएका छौं विभिन्न गायक कलाकारहरूका आवाजमा सजिएका मीठा मीठा नेपाली लोकगीतहरूलाई। त श्रोता, पहिलो गीत सुन्नुहोस् गायक कलाकार कुमार बस्नेतको स्वरमा रहेको यो गीतलाई।

0: यहाँहरूले सुनिरहनु भएको थियो नेपाली लोकगीत जसको निर्धारित समय यही पूरा हुँदछ। श्रोताहरूले अब सुनिन्छ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषामा समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी एनसीओआरडी की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइन आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
3: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मन भावन में। मैं हूं नूपुर और आज का ये कार्यक्रम उन सभी दिलों के नाम है जो हर धुन पर झूम उठते हैं, हर गीत में अपनी कहानी ढूंढ लेते हैं और जिनके लिए संगीत जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। छोटी छोटी सी बातों में खुशियां ढूंढ लेना ही जो है वो इनका काम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुरीली यात्रा की एक मनभावन प्रस्तुति के साथ, एक प्यारे से गीत के साथ। और जिस दौरान ये गीत आप तक पहुंच रहा है तब तक आपको करना है एक छोटा सा काम जी, एक ईमेल रवाना करना है। हमारी ईमेल आईडी तक ये पहुंचना चाहिए और हमारा ईमेल आईडी वैसे तो आपके पास है, फिर भी बताना हमारी ड्यूटी है। fmgoldaardelhi@gmail.com fmgoldaardelhi@gmail.com। इस ईमेल पर एक ईमेल भेज दीजिए, हमें लिख भेजिए अपना नाम, आप किस शहर या स्थान से हमें सुन रहे हैं, कहां से जुड़े हुए हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ, और साथ ही उस गीत का नाम भी जिसे आप आज सुनना पसंद करेंगे। हाँ, अगर साथ में ये भी बता देंगे हमें कि गीत आपके दिल के इतना करीब क्यों है, उससे जुड़ी कोई खास याद या कोई खास वजह है तो वो क्या है, तो हो सकता है आपकी पसंद हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। आज किसी कारणवश व्हाट्सएप हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो आपको बस ईमेल ही रवाना करना होगा। देखिए थोड़ा काम आसान हो गया, वरना फोन भी यूज कीजिए और ईमेल भी भेजिए और मैसेज व्हाट्सएप के जरिए भी भेजिए, तो आज सिर्फ और सिर्फ ईमेल से काम चलाते हैं। और जब तक आपके ईमेल्स हम तक आते हैं तब तक हम आपको ये प्यारी सी धुन सुनाते हैं, धरती फिल्म का ये गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

और ये जो एफएम गोल्ड की राहें हैं ये भी अलपेली प्यार की राहें हैं जहां हम गाहे बगाहे मिलते ही रहते हैं। आपके ईमेल्स बता रहे हैं कि आपने मिस किया मुझे और आपको मैं अभी भी याद हूँ।

बहुत बहुत शुक्रिया बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्किन लिख रहे हैं कि आज मैं आपकी आवाज काफी दिन बाद सुन रहा हूं और वैसे ही लग रही है। आपकी ही मस्किन मैं बहुत दिन बाद पढ़ रही हूं और वैसे ही लग रहे हैं जैसे पहले, और उनकी जो नंबर्स है ना, तादाद, वो भी बल्कि बढ़ी गई है पहले जैसी, तो मैं क्या बोलूं, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यह गणेश वाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार, आपका ईमेल पहुंच गया है हमारे पास। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक लिख रहे हैं, सारे ही गीत आपके अच्छे होते हैं, कोई भी गीत में हमारा नाम भी शामिल कर दीजिए। गीत जनाब सारे ही अच्छे होते हैं, बस हाँ थोड़ा ना पसंद पसंद का फर्क हो जाता है। और ये जो ईमेल आया है, ये आया है सुरेश नारंग जी का, सहारनपुर से। इनके साथ हैं आशा नारंग और सोनाली नारंग। आप सभी का ईमेल पहुंच गया है हमारे पास। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से हैं परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, सुरेंद्र कौर रंधावा, आपका भी मेल आ चुका है। और छत्तीसगढ़ भाटापारा से हीरामणि वर्मा, साथ में परिवार के सदस्य पारस मणि, पुष्पेंद्र, नोखेलाल वर्मा, आपने ईमेल भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात गांधीग्राम से हैं प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का ईमेल। आज जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाट्सएप की सुविधा नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, ईमेल बहुत है हमारे लिए। अगर हमें आपस में एक दूसरे से कुछ भी कहना सुनना है तो ईमेल के जरिए हम कह सकते हैं। गुरुजी बहुत बहुत राम राम, आज आपने दर्शन दिए बहुत खुशी हुई, फरमाइश की जरूरत ही नहीं है, गाने सभी अच्छे बजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरीशंकर जी, नांगलोई से आपने ईमेल भेजा और इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें की, आपको इतना यकीन है कि गाने सारे अच्छे बजेंगे, तो ये मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि क्योंकि आप सभी की फरमाइशें बहुत अच्छी होती हैं जिन्हें हम प्ले करते हैं, तो जाहिर सी बात है गाने सभी बहुत अच्छे लगते हैं। कुन्नौर से हैं आदिल कमर तस्दीक और अली मुजफ्फर अली, शुक्रिया धन्यवाद। आप लिख रहे हैं, किस बात का शुक्रिया दोस्त, आपने कोई फरमाइश भी नहीं भेजी और मैंने कुछ प्ले भी नहीं किया आपके लिए, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार भेजने के लिए। प्यारी सिस्टर आरजे नूपुर जी, एनी सॉन्ग, बिल्कुल जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आशना, मोहम्मद कैफ अंसारी। तो चलिए इतनी सारी फरमाइशें आ गई, किसी भी गीत पर नाम हमारा शामिल कर लीजिए। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी, हम पहुंचा रहे हैं गीत फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सभी के पास, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। फरमाइश बोधराज खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से कर रहे हैं और आपके साथ कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश जी भी हैं और गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 से भी है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
2: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
3: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका

0: ना ना भूलिए।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: बिल्कुल, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 फ्रीक्वेंसी और प्रोग्राम मन भावन। तो गर्मियों का मौसम अपने पूरे शबाब पर है और ऐसे में हर कोई चाहता है ना किसी तरह से इस तपती गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाए। इसीलिए तो हम इतने प्यारे प्यारे तराने आपके लिए लाते हैं कि चलिए थोड़ी सी ठंडक दिलों को ही मिल जाए, क्योंकि गर्मी तो बहुत ही है। लेकिन हाँ, इन गीतों के साथ साथ ना आप छोटे छोटे सी कुछ बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। पानी पीते रहिए, नींबू पानी हो, साथ में छाछ, लस्सी, नारियल पानी, ऐसे पदार्थों का सेवन करते रहिए। और हम तो पी रहे हैं ना, लेकिन जो बेचारे बेजुबान सड़कों पर हैं, घरों में हैं, उनके लिए भी कहीं थोड़ा सा पानी रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पक्षियों के लिए आप छत पर बालकनी में किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी रख सकते हैं। और अगर सड़क पर कोई ऐसे आपको बेजुबान दिख रहा है तो उसके लिए भी थोड़ा सा अगर आप पानी रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्के और सूती कपड़े पहने, तेज धूप में आने जाने से जितना हो सके बचें आप। खान पान थोड़ा हल्का रखें और घर में भी थोड़ी ठंडक बनाए रखें। और बहुत जरूरी पता है क्या है कि हम अपने दिमाग में भी ठंडक बनाए रखें। जरा जरा सी बातों पर ऐसे ना उबल जाना, एकदम आग बबूला हो जाना, वो छोड़ दीजिए जनाब, आराम से रहिए। कहते हैं ना कूल आजकल, तो वैसे रहने की बहुत जरूरत है। स्नान कीजिए, स्वच्छ रहिए और छांव का सहारा लेते रहिए। बाकी एफएम गोल्ड का सहारा तो आपके पास है ही, मन भावन का सहारा आपके पास है ही, बहुत से ईमेल्स का सहारा हमको है, क्योंकि बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं जिन्हें हम शामिल करने वाले हैं। गीत आपको बता दूं, बहुत ही प्यारा सा, एक लंबे अरसे बाद शायद मैंने फरमाइश देखी इस गीत की, मन कर गया जी आज तो ये गीत सुनना ही है और सुनाना भी है। फिल्म दो बूंद पानी से पीतल की मोरी गागरी, वाह क्या पसंद, वाकई लाजवाब। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु जी, आप सबने मिलकर ईमेल भेजा, इस गीत की फरमाइश भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहाने हम भी सुन लेंगे आज ये गीत। कुछ और नाम यहाँ पर जो शामिल करने हैं जरूरी, क्योंकि उनके नाम भी आए हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, किसी भी सॉन्ग में हमारा नाम आप प्लीज एड कर दीजिए। ये हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफताब, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया। और ये ईमेल जो आ गया है मेरे पास अभी अभी, ये आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नहावकर साहब का, निर्मला जी हैं, विशाल जी हैं, सोपान, नारायण और आशीष, आप सब मिलकर एक ईमेल भेज रहे हैं हमारे पास। मेल पहुंच गया है हमारे पास दिल्ली शहर से, यह है अस्मा परवीन और आमना परवीन। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेल भेजा। और जी कोई फरमाइश नहीं, कोई फरमाइश नहीं, मतलब पता क्या, हमें जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास जो है जितना है हम उसमें बहुत खुश हैं, बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे। ये हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, आप सबका ई मेल आ गया है हमारे पास। और ये है जी कहां से है ये ई मेल, गांधी चौक में राजस्थान से है, बबलेश हैं, डैनी, मनीष और दिनेश चौहान हैं, बाबूराम जयपाल जी हैं साथ में। आप सभी मिलकर लिख रहे हैं कि जी मन भावन का जादू तो वाकई निराला है, जो हम सबको मंत्र मुग्ध कर देता है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल, मेरा भी कुछ यही मानना है। चलिए सुनते हैं परवीन सुल्ताना, मीनू पुरुषोत्तम और साथियों की आवाज में ये प्यारा सा तराना।

एक अरसे बाद वाकई इस गीत को सुना और बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया मुझे तो। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ईमेल आपके पास है ही, जो है fmgoldaiadelhi@gmail.com। बहुत से लोग हैं हमारे नियमित श्रोता हैं, रोज सुनते हैं, तो आपके लिए बता दूं कि आज बस आज भर के लिए कुछ ऐसा है कि व्हाट्सएप की सुविधा हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ ईमेल आप जरूर भेज सकते हैं। अभी लाइव सुन रहे हैं कार्यक्रम, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति चल रही है, ये लिख रहे हैं मंगल जी, रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील, आप सब ने मिलजुलकर ईमेल भेजा है श्री गंगानगर राजस्थान तरोड़ा जिला से। कभी कभी कोई नाम ऐसा हो जाता है कि बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है बोलने में, लेकिन टाइम जरूर लगाएं, सही बोलें, बाकी बहुत जरूरी है। वारली मुंबई से हैं नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान, आप ने लिखा है एनी सॉन्ग। बिल्कुल जी, सॉन्ग्स ही सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, किसी भी गीत में जो आपकी पसंद का हो हमें शामिल कर लीजिए। जनाब मनभावन ना मेरी पसंद के बारे में नहीं है, मनभावन आपकी पसंद के बारे में, जो गीत आप सुनना चाहते हैं, जिनकी फरमाइश आप हमारे प्यारे प्यारे श्रोता भेजते हैं, हम वही बस आप तक पहुंचाते हैं। नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत, रिफत, नुजहत, शाजिया, नाजिया, आप सभी बहने हैं, कह रही हैं हमारा ये मैसेज शामिल कर लें प्रोग्राम में और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दें। तो लीजिए शामिल हो गया, मुझे इंतजार है कि आपका शुक्रिया मुझ तक आता है कि नहीं। तहे दिल से शुक्रिया ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से, कि दीदी किसी भी गीत में जो है वो आप हमें शामिल कर लें। छत्तीसगढ़ पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।

माँ, और हमारे पास ये मैसेज आया है, देख रही हूं मैं ईमेल में मैसेज किनका है। शबनम को और मेरे शौहर अकरम को आप का नहीं मतलब शबनम का और मेरे शौहर अकरम का आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। और आज तो मन भावन में चार चांद लग गए हैं, अच्छा साथ में आपकी बेटी भी है। ठीकरी मध्य प्रदेश से आपने ये ईमेल भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि गीत जो हमारे लिसनर्स की पसंद के हैं वो आपको भी पसंद आ रहे होंगे। बोर खेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूर्त जी हैं, नेहा जैन, दीपक मयंक और चेतना, अपनी पसंद का कोई भी गीत, मेरी पसंद कुछ नहीं, सब आप हैं, ये सब आपके बारे में है। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आज कोई फरमाइश नहीं क्योंकि सभी गीत हमारी फरमाइश के हैं, हमारी पसंद के हैं। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लगता है जो गीत आप लोगों को पसंद है ना, यकीन मानिए अगर कोई भी आरजे इन इस दौर के गीतों की प्लेलिस्ट बनाएगा ना, तो ये तमाम गीत प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं जरूर शामिल होंगे, जरूर जरूर। नई बस्ती गंजुंडवारा से है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद कलीम अंसारी, इतने सारे नामों के बाद अब क्या है, मांग के साथ तुम्हारा हमने मांग लिया संसार। देखिए शब्दों का खेल, मांग के साथ तुम्हारा हमने मांग लिया संसार। कुमकुम गुड़िया हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से, प्रताप वर्मा महावीर कॉलोनी सोनीपत से, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला नेजा, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू, दिव्यंदु संस्कृति और पौरुष, गांव खावरी से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अव्याना कांचव, आप सभी के साथ साथ मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी डेविस और विमला, आप सभी के पसंद पर ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वरों में। फिल्म नया दौर।

चलिए जी, कुछ और नाम शामिल करने का वक्त हो चला है। और ये हैं धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद बीपी आलिया और आयान बापू का प्यारा सा ईमेल, और सेक्टर 8 भिलाई से प्रभा, अनुश्री, पूजा, डॉली, आप सभी का ईमेल पहुंच गया है हमारे पास। और ये जो हैं दोबारा से ईमेल पहुंच रहा है, और मुझे याद है कि मैंने ये नाम शामिल कर लिया है। जो याद रह जाएगा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा नाम शामिल हो जाएगा। मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़, और बहुत सारे गानों की प्लेलिस्ट इन्होंने बना के रखी, और कह रहे हैं कि ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें से कोई भी सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए, धन्यवाद, ये प्लेलिस्ट तो हमारे काम आएगी बिल्कुल, इसको तो सेव करके रखना पड़ेगा। और ये है अल्तमश, समीना, मुदस्सर, फिरदौस, जुम्मा नगर, खंडवा के बच्चे, और लिख रहे हैं कि आपको बहुत दिन बाद सुन रहे हैं, और सारे बच्चे आप कैसे हैं मुझे जरूर बताइए। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, बहुत दिन बाद जब कोई मिलता है ना तो अच्छा लगता है उससे मिलके, है ना, ऐसा लगता है कि कोई पुरानी यादें ताजा हो गई और पुराने दिन फिर से लौट आए। चिपा कॉलोनी खंडवा से हैं मोहम्मद यूनुस खत्री, सादिक खत्री, अयूब खत्री और यूसुफ खत्री, और आपका भी कुछ यही मानना है? बिल्कुल, मेरा मानना भी ऐसा ही है। अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, लिख रहे हैं विजय, प्रियंका, ट्विशा है ना आपका नाम, बहुत प्यारा नाम, पल्लवी और एकता, टंग ट्विस्टर जैसा नाम, ट्विशा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा नाम है। और ये है जी सबरा, शबाना और रईसा, खंडवा की तीन बहुएं, यानी बहनें, बहुएं और बच्चे, सबके मैसेज आज पहुंच रहे हैं एफएम गोल्ड के नाम गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार, प्रमोद, पुष्पेंद्र, कोई भी गीत, बिल्कुल सारे गीत आपकी पसंद के। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम और मरियम सैनब का ये ईमेल पहुंच गया है हमारे पास। इंद्रा विहार दिल्ली से हैं बीबी अंसारी, निशा परवीन, डब्ल्यू अंसारी, और उमर खेर से अजीता, और ये हैं साथ में सरिता। आपने फिल्म का नाम लिख दिया है लेकिन आपने गीत का नाम नहीं लिखा है, तो थोड़ी सी मुश्किल इस वक्त हमारे लिए हो गई है। ऐसा मत कीजिए, हम कश्मकश जो है वो बढ़ जाएगी जिंदगी की, इस फिल्म का कौन सा गीत आपको पसंद है और कौन सा नहीं। चलिए जी आगे मेल देख रहे हैं, ये हैं स्वर्ण सिंगल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह, आप सभी हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से, और आप सब ने मिलकर ईमेल भेजा है कि कोई भी गीत जो आपको अच्छा लगता हो वो हमें भी अच्छा लगेगा, सुनवा दीजिए। तो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो कह रहा है तेरी आंख का जो इशारा ना होता, फिल्म है नई रोशनी, रफी साहब की आवाज, बहुत ही प्यारा सा ये तराना, आइए मिलकर लुत्फ उठाते हैं इसका।

कुछ और ईमेल्स यहां पर शामिल करने का वक्त तो है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि कभी भी ना कोई खास बड़ी वजह ना ढूंढे हंसने मुस्कुराने की, क्योंकि इस भागते दौड़ते जिंदगी में ना थोड़ा ठहरना, अपने लिए कुछ पल निकालना और दिल खोलकर मुस्कुरा लेना भी बहुत बहुत जरूरी है। टूटी हुई चीजें अक्सर हौसले से जुड़ जाती हैं, थका हुआ मन कभी कभी एक सच्ची हंसी से बहल जाता है। हर बात का जवाब जो है ना वो शब्दों में देना जरूरी नहीं होता, कई बार मुस्कान भी बहुत कुछ कह जाती है। चेहरे पर हंसी की रोशनी हो तो मन का अंधेरा भी भाग जाता है ना, धीरे धीरे चढ़ जाता है, भाग जाता है। गम आए तो उन्हें अपनों के साथ बांट लीजिए, और खुशियां मिले ना तो उन्हें भी खुलकर बांटिए, लुटाइए, खुद

0: भी मुस्कुराइए, दूसरों को भी वजह दीजिए कि वो भी मुस्कुरा सके, क्योंकि दर्द भी वही कुछ हल्का हो जाता है जहां लोग मुस्कुराकर जीना जानते हैं। और यादें भी ना वहीं सबसे प्यारी बनती हैं जहां हंसी की गूंज होती है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी तैयारी के। तो आज ऐसा कीजिए, यूं ही बिना वजह के थोड़ा मुस्कुराइए, खुद से दो पल बातें कीजिए और जिंदगी की छोटी छोटी बातों में खुशियों की तलाश कीजिए। हो सके तो किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आए, ऐसा कोई छोटा सा आज काम कर दीजिए। जैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं भी हंसूं मुस्कुराऊं और आपके चेहरे पर भी आज हंसी लाऊं, मुस्कुराहट लाऊं। जब आप अपना नाम सुने है ना, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत कमल साहनी पिंगलावाला चौक जालंधर से हैं, बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य, किशन वंजानी नीलम, स्वाति किशन रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार, खयाला से ऊपरकोट मोहल्ला चौकुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, कस्बा कुन्नौर, उत्तर प्रदेश से एफटी खान फैमिली के लोग शामिल हैं, फारूक अली, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा और जो और मैसेज हैं ईमेल के जरिए पहुंचे हैं, ये हैं पुनावले पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा, ऋषिकेश, जीविका, सविता और अशोक, आप कोई भी गीत सुनवा दीजिए ऐसा लिख रहे हैं। ये हैं आदिल कमर गुन्नौर से, बेहतरीन लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है, पता ही प्रोग्राम शुरू होता है ना मेरा मन ही नहीं करता ये खत्म हो, ऐसा लगता है दो तीन चार घंटे आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाती रहूं और आपकी ईमेल शामिल करती रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, हर चीज का एक समय होता है, एक वक्त होता है, तभी वो अच्छी लगती है। जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। फिलहाल सगाई फिल्म से गीत आप तक पहुंच रहा है मोहम्मद रफी, आशा भोसले के स्वरों में, और गीत भी प्ले हो रहा है, साथ में आपके मेल्स कुछ और यहां पर शामिल कर लेती हूं, वक्त रहते देखती हूं कितने शामिल कर पाती हूं। पुराना तालाब डुमराव से वलील अंसारी, आसमानाज अंसारी और शबनम बानो का ये ईमेल पहुंच गया है हमारे पास, मेल कुछ और ढूंढने पड़ रहे हैं मुझे। सनावत से शेख मूसा का मेल है और जॉन डी कैस्ट्रो है, रोजी पर्ल विलिस आप सभी हैं जनकपुरी सहारनपुर से, तो ये तो कहना बनता है कि जनाब ना ये जमी थी ना आसमां था, लेकिन संगीत था, गीत था और आपका हमारा साथ भी जन्मों जन्मों से ऐसा लगता है कि साथ ही है। ये विचार रखिएगा आज के दिन अपने साथ और आपका आगे का दिन जो है बहुत अच्छा बीते, हंसते गाते गुनगुनाते मुस्कुराते बीते, ऐसा मैं चाहती हूं। ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का भी, और हाँ सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम कोड मनभावन, आज यहीं पर नमस्कार।
1: मीडियम वेव को 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलोहर्ट्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौ। यसका साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजंघा र मोबाइल एप न्यूज अन एआईआर मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, समय अहिले हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार 4 बज्ने लागेको छ र हामी उपस्थित भएका छौं अब उसो प्रसारण गरिने कार्यक्रमहरूको छोटो जानकारी लिएर। र यसगरी रेडियो सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण रेडियो प्रेमी श्रोताहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत तथा न्यानो अभिवादन जनाउँदछौ। श्रोता, यस जानकारीको लगत्तैपछि सुनाउनेछौ फौजी दाजुभाइहरूको निम्ति समर्पित कार्यक्रम शौर्य गाथा। 4:30 लिएर आउनेछौ लेप्चा भाषाको कार्यक्रम तुङकुङ तुन्ला अन्तर्गत प्रथममा फुर्सोङ लेप्चाको स्वरमा केही गीत, त्यसपछि प्रस्तुत गर्नेछौ प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना विषयमा एक वार्ता। 5 प्रस्तुत गर्नेछौ लिम्बू भाषाको कार्यक्रम नुसी चान अन्तर्गत प्रथममा समाचार, त्यसपछि देवप्रसाद लिम्बूको स्वरमा केही गीत, अनि लागू पदार्थको सेवन स्वास्थ्यको निम्ति हानिकारक विषयमा एक वार्ता। 5:30 मनोरञ्जन गराउनेछौ सिक्किमे भुटिया भाषाको कार्यक्रम पांगेन मेन्तो अन्तर्गत प्रथममा टाशी सेंगा अनि साथीहरूको स्वरमा केही गीत, त्यसपछि लागू पदार्थको रोकथाम र युवा जागरूकता विषयमा एक वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौ। 6 आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समप्रसार गरी सुनाउनेछौ हिन्दी भाषामा समाचार।

शौर्य सम्मान और संगीत से सजे इस खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में मैं आपकी दोस्त रेणु पांडे एक बार फिर आप सभी का आपके ही पसंदीदा कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जहर जिंदगी का जो तुमने खुशी में चखा है, जहर जिंदगी का जो तुमने खुशी में चखा है, वो असल में एक अंधेरा और गहरा धोखा है। खोकर अपनी सेहत तुम क्यों अपनों को रुलाते हो, खोकर अपनी सेहत तुम क्यों अपनों को रुलाते हो, संभल जाओ अभी क्योंकि जिंदगी का हर लम्हा सच्चा है। दोस्तों, आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रही हूं और वह है विषय अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 26 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति जागरूक करना तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो फौजी दोस्तों, आगे इस कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक विषयों पर ढेर सारी बातें होंगी। वक्त हो चला है कार्यक्रम के पहले नगमे सुनने का। फिल्म का नाम है लक्ष्य, आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

प्रिय श्रोताओं, जीवन प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। यह अवसरों, सपनों, संघर्षों और सफलताओं की एक अद्भुत यात्रा है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक, कोई शिक्षक तो कोई कलाकार। लेकिन जब कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाता है, तब उसके सपने धीरे धीरे टूटने लगते हैं तथा उसकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और उसका जीवन अंधकार की ओर बढ़ने लगता है। नशा एक ऐसी आदत है जो शुरुआत में आकर्षक लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, सम्मान और भविष्य को छीन लेती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे केवल एक बार या थोड़ी मात्रा में नशा करेंगे, लेकिन यही छोटी शुरुआत कई बार एक खतरनाक लत में बदल जाती है। तो फौजी दोस्तों, इसी क्रम में आइए सुनते हैं फिल्म इम्तिहान का गीत, स्वर से सजाया है किशोर कुमार ने।

पाएंगे कि इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा 7 दिसंबर 1987 को पारित संकल्प 42/112 के माध्यम से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बाद यह महत्वपूर्ण दिवस पहली बार 26 जून 1989 को मनाया गया। यह तारीख चीन में अफीम व्यापार के अंत की याद दिलाती है। जून 1839 में चीन के पहले अफीम युद्ध से ठीक पहले चीनी अधिकारी लिन जेक्सू ने हुमेन ग्वांगडोंग में अफीम के अवैध व्यापार को नष्ट कर दिया था। इसी ऐतिहासिक घटना को सम्मानित करने के लिए 26 जून को चुना गया। इसका उद्देश्य केवल नशीली दवाओं की आपूर्ति को रोकना नहीं है, बल्कि उन लोगों की सहायता और पुनर्वास करना भी है जो इसके दुरुपयोग से प्रभावित हैं। तो फौजी दोस्तों, कार्यक्रम के इसी पड़ाव में सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है नमक हलाल। अपनी मधुर आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

नशा केवल व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार को प्रभावित करता है। जब परिवार का कोई सदस्य नशे का शिकार होता है तो उसके माता पिता भाई बहन पति पत्नी और बच्चे भी मानसिक पीड़ा का सामना करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है, घर में तनाव बढ़ता है, कई बार घरेलू हिंसा और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं भी जन्म लेती है। आज के समय में युवाओं के बीच नशे का बढ़ता प्रचलन विशेष चिंता का विषय है। युवा देश का भविष्य है, उनकी ऊर्जा प्रतिभा और परिश्रम राष्ट्र की प्रगति का आधार होते हैं, लेकिन जब युवा ही नशे की ओर बढ़ते हैं तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। फौजी दोस्तों, अब थोड़ी चर्चा अवैध तस्करी की। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं है बल्कि समाज और मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। तस्करी के माध्यम से नशीले पदार्थ विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं और अधिक से अधिक लोगों को उनकी लत का शिकार बनाया जाता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं फिल्म इकबाल का यह गीत जो आज के युवाओं को प्रेरित करती है। आवाज दी है केके ने।

दोस्तों, नशा मुक्त समाज के निर्माण में हम सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और उनकी समस्याओं को समझें। शिक्षकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन दें और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें। युवाओं को चाहिए कि वे अपने समय का सदुपयोग करें।

तथा खेलकूद, योग, संगीत, साहित्य और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें। दोस्तों, आइए इस अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर हम सब मिलकर एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जहां हर युवा अपने सपनों को पूरा कर सके, हर परिवार खुशहाल हो और हर नागरिक स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन जी सके। तो फौजी दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिरी नगमे को। आप सुने इस नगमे को और हमें दे विदा, कल फिर मिलेंगे। आज हम अभी जो गीत सुनने जा रहे हैं वो फिल्म है जो जीता वही सिकंदर। आवाज दी है उदित नारायण और साधना सरगम ने।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि एआई विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि यह सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला व्यापार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेबको 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलोहर्जमा हामी

रेंजिंग सा जुंगेन पुन रेन ओम प्रकाश माथुर न सो तादुंग सा फिफ्थ माइल का निम्बू सरस्वती डोलमा रिमली का डिक्लत कजन सुंगयमु थपे सा गुलोनमुंग सालु कचन थम्बगम चुमचे तारे का जुंगेन पुन ना सुंगय रुम सा देव का रिमली प्रताम का कति नेथो ज्योतिलिंगा यंगने रिम शिवा

डेजोंग आदि की सिक्योंग कुशब ओम प्रकाश माथुर की तरी तादुंग की पास फिफ्थ माइल ना युवे यांगचेनमा ड्यूमा लागा यांगना सरस्वती ड्यूलमा मंदिर ना गोचु के छोडेल लेरिम ना कुंडे चौ तोले गेन ले मई खोकाब दिना नादे सिक्योंग चोगी लागा की सखा नंगलो ददसा ज्योतिर्लिंग ता लाई सिवे सिवे कुडे उच्चे नावई लेरिम ना सकुल थुमी यांगना डेजो जुंकी ट्योते ता जाचा लेजी लेंपो कुशब जिते डुंगेल चो लागा की ओचाप चोपो लेला धाम इंडाई गोजे दिचु ता इमी दिचु की गेन येखेंवे डेजो क्योचक का ना होंखे जुलाई दोई छे निसु निम्चे क्योती देशे की ता चेई डेजो जुंकी डेजो क्योचका लेखुंग की ठुंची ललित कुमार गुरुंग थोले ख्याबरा नावे कायिक नंगतर डेजो क्योचक की प्याताप ना लेथे पेलतंग की डिग्जी थेंचे चुडु उंगा हो फिंबे वासा लो लाले नंगजिन डेजो क्योचकां की चोजी कुशब मिंगमा नोर्गु सेर्पा छो की क्योची दी हिशको ना पाई थनी ग्यालयोंग म्योजे दोक्चे निम की खोकाब ना डेजो जुंकी चिचो लेजी लेला की चिंतन भवन ना नादे ठे लेरिम चिक गोचुकोई लेरिम ना कुम्डे चौ तोले लो लेला की कालोपो कुशब संजित खरेल छो चेन्ये के बे खोकाब दिना चिचो लेजी लेला की ठुंची सरिका प्रदान की लेला की थाप धाम इंडा दिचु सहयोगी कर्मचारी सहयोगी साथी ता सहयोगी मित्र कर यंसे फिम्बो ना भई सोने जोंखा ना तरी गोचुके म्योजे मेप ग्यागा यंगना नशा मुक्त भारत लेरिम नहो जोंखा लीजी उखा ना नादम जे लेरिम गोचुके लेरिम ना सोने जोंखा की खरसुंग गोजे जोंखा जोंपे एचडीपीओ यंपु लेला डाम इंडा की गोजे चु ता जुंशापो चु जुए खेंबे लेरिम लो सुंगदेल नांगजिन सोने जोंखा चिक्याप लेकुंग की एचडीएम चो की सुंगबई सोरेंग नांग की खरसुंगबो चु की ड्रग की पेचे मालेम तिंग छले लेम नांगजिन ये खोंगी जुंगी लेकुंग टिमला ले नंखे लेकुंग ता मिमंग चुई पाल टिंडल की चिकु लेरिम दी मिक्युल डुब चुशे इनसे सुंबई सोरेन जंका की जुंग की लेकुंग डामिंडा दिचुना थरी नादमजे लेरिम गोचुकोई कदी की गोजे थमजे लो ता मंग जुंगशापो थमजे की टिंडल से चिकलो लोगदेन नाये इजुं की सिंगले ता सिंगयोपो लेजी लिंका की का नंगतर चिलो नितो निशुचादु की जुन दोवी चे चिकले सुमचु संग सुंगजिन हो ये पे खेत बचाओ लेरिंग हो थरिंग चुजाचेन ता रोलेप लामादिन ग्राम पंचायत देचे ना सिंगयोपो सिंगयो लेरिंग गोचुकोई लेरिंग दिना सिंगले ता चिसिंग रिक्पई लेला की सिंगले यागे उखा ता एटीएमए आत्मा की ठुंडल ना गोचुकोई खोकाप दिना क्योंकि पंचायत चोजी जम्बो कुशब मोहन गुरुंग की सिंगयोपो लो सिंग चु सुंगक्यप जक्षे ता थ्यूरिंग सिंगले लाले नाशे की शिवा फिये रिक्सर की सूर्जो ना सिंगले केवंग चु की सिंगले चार्जी सचाई सेंजों जिंक्यो ता चिसिंग रिक्पे चार्जी दीले सिंगडे दुम्रा जिंक्यो कोर इनसे पे मना भई नौरबहादुर भंडारी थोरिम लब्डा तादों की नेखम रिक्पे देखा ना नीचे थोवे चिग्या डिक्चे सिग्जु ये डिक्चे दिने लोकसभा थुमी इंद्रहंग सुब्बाचो की एमपी लेट गाव गोचु गई डिक्चे दिकी कंप्यूटेशनल मटेरियल साइंस ना लोबजंग ता सब्जुक नंखे चु ता लो सुदा ता तोपचुक ना चे यंपु सेये लेम तिंग सेमचु नंखे ता कंप्यूटेशनल साइंस मटेरियल साइंस यंपु जेन ngakam rikpe cho dichu na sibjuk na she lo zo data zo shi sikkim state cooperative bank ki theng isu cha di lore chi chi chokdi tani ju bai chokdi lo sungdel na ji ngue kha ki zo ji dup pin cho kalin ki ngue chi ni to ni su cha ta ni su cha nga da ni su cha du na ngue kha ki korul gu bum ngap chu nga ji to nga gi kyapsa zo ye pe yen se pin ye kyapsa di le bum गेचु ग्याग टु तों सुम ता टुकचु ग्याग टु ता ngapchu tiru ki tiru dichu stakeholder dichu la pinse ki ta chei chokdu lerim di na ngyu kha ki kalopo chaitnya sharma ta jin ki yang sungden la wei de yang pu ngyu chi lo ni to ni chu sang a ta ni to ni chu sa tu na chale lem na we ten npcs sum lo tenga phi she i de jo teng tong pu सिक्किम राइफल एसोसिएशन थोले शूटिंग टैलेंट हन नितो निस्तातु गोचु से ता चेई छक्वे चोजिन संजीव ब्रतकी की चेंजिन ना तुइंगे लेरिम दिना
Ke chi sopya denzong ki korsung IRB ta SCP ki zungshapo tsui gen ten migyul jayi. Sikkim Rifle Association ki choji Sanjay Buratoki ki denzong ki korsung goze DIG Okshe Sajdewa nyampu zedi lerim ki migyul kor kamol na wai. Lerim di migyul chowo ne korsung mami nanglo shooting talent ki ngoji na di kongchu lo chim nanglo tashin bompu topshe ten satsa pyushe di. Lungge khan gato le tharin ki nyense nara zubayi tojiji.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशारोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100

0: सौ वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
0: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केन्द्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में एचएसबीसी के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत यूके व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमापार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
2: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
1: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरू और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्वकप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमरीका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Center in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests, and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. The Home Minister stressed that better coordination and the use of technology are essential for strengthening the country's campaign against drugs and drug trafficking networks.
5: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
4: Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said that the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes. He urged all chief secretaries and directors general of police to upload details of drug-related cases on these portals within a fixed timeline. He said that timely sharing of information would help the government to monitor cases more effectively and provide states with necessary feedback and suggestions to improve investigations and enforcement. The Home Minister also launched a drug disposal fortnight, under which over 2,09,000 kilograms of seized narcotic substances, valued at around 6,000 crore rupees, will be destroyed. Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal today announced the deployment of 1,000 advisory personnel across the country and the upgradation of the trade portal to help businesses maximize the benefits of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. Addressing the 10th annual UK-India Week in London today, Mr. Goyal said that the India-UK partnership has expanded beyond traditional trade to encompass strategic sectors such as technology, sovereign AI, critical minerals, defence and clean energy. The minister said that India moved from the fragile five to being recognised as the world's biggest opportunity under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said that India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement is focused on bringing the best of both countries to each other.
6: The UK agreement is a template which is very comprehensive. It's not only about tariffs and rules of origin. It's not only about trade in goods and services, it's about collaborations in technology, in education, culture, the arts. It is focused on bringing the best of both countries to each other. It's a fair, equitable, very balanced agreement.
4: Talking to the media in London, Mr. Goyal said that his counterpart from the United States was in India for the last 3 days. He informed that they had extensive engagements and broadly, both are in agreement on most aspects of the trade deal. Global investment bank Goldman Sachs has raised India's real GDP growth forecast to 6.8% for the calendar year 2026 from its earlier estimate of 6.5%, citing easing oil prices and improving domestic economic conditions. In its latest report titled India, Improved Macro Outlook After the US and Iran Deal, the Global Investment Bank lowered its headline inflation forecast by 0.2 percentage points to 4.4% and reduced its current account deficit estimate to 1.1% of GDP amid a sharp correction in global crude oil prices after the US-Iran peace deal. Ministry of Health and Family Welfare has proposed amendments to the Drugs Rules 1945 to simplify the procedure for obtaining permission for import of drugs for examination, test or analysis. The ministry said that the amendment introduces an acknowledgement-based system for import of all drugs in small quantities for analytical and non-clinical testing purposes. The simplified procedure shall not be applicable to certain drugs belonging to the categories of sex hormones, cytotoxic drugs, and beta-lactam drugs. The initiative is expected to provide a major boost to research and innovation in the country while facilitating more efficient and streamlined regulatory process. A court in Ayodhya today remanded all 8 accused arrested in alleged anomalies in the Ram Temple donation case to judicial custody till June 29th. The accused were presented before the local court following their arrest. KC Verma, prosecution officer at the Ayodhya Chief Judicial Magistrate Court, informed reporters that the remand was extended until Monday, June 29th, when the accused will be produced before the court again. Verma said that in total more than 79 lakh rupees, 85,000 was recovered from them, except for one accused, Subhash. Nothing was recovered from him, though he was involved in the conspiracy. Different amounts were recovered from the others. He added